आइडिया का सामान किन्दा 37,700 रुपियाँसम्म क्याश ब्याकको अवसर, साथै हरेकमा आइडिया को साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जित्ने मौका, साइड बाई साइड र 40-door रेफ्रिजरेटर किन्दा इन्डक्सन निशुल्क, फ्रन्ट लोड वासिङ मसिनमा 6 केजी, टप लोडमा 4 केजी र सेमी अटोमेटिकमा 2 केजी सर्फ एक्सेल निशुल्क, डिस वासर किन्दा 2 वटा वासिङ ट्याब्लेट निशुल्क। आइडिया, दसैंको खुशी घर घरमा उपहार।

दशैंमा सीजी ब्रान्ड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एन्टरटेनमेन्ट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपैयाँ सम्मको बचत। वाशिंग मशीन मा 6 केजी, टप लोड वाशिंग मशीन मा 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन मा 2 केजी सर्फ एक्सेल, माइक्रोवेव मा कुकिंग किट र एसी मा निशुल्क जडान, साथै 0% ब्याज मा सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपालीको उत्सव दशैं तिहारको एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।